0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: दस और रेडियो अमन।

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ, το οποίο έγινε πότε σαν πάρσι, δεν τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά, πως σαν πάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ, έχω χωστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα είμαι ζητή μου έχω κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γιλεύε χάρβαχτε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβη, ρικρέτη, ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरावरो उदार तो ये या जे पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دم رکشلا ریزلت یا دای دارتا اویه چه داو موتا چیرتا ملویشی
1: تار کنا داو تو دفا بانی گل شه اندرون لکی گیرد جانزه بگاله پر شوی مارکی شه دیشما من دیستیبیوتر حافظ ایر سیب سر او درتا ملویشی

दावास थी रेडियो मराठासी शारीर चार खैर खेन टांग था मौत है वेले किसी रास के हमदर्द हो सलीब याद अखबल खुश और इदुन को बहिजमत के हाजिर शवलम प्रोग्राम द खुला रात सारा और दा प्रोग्राम छिदा बिल्कुल खुश और इदुन के दिपरे पेश की जी सिफात कास्मेट इस पाकिस्तान दे तरफ ना रोजना जनाब खुदी तक अजरा गरमा के 11 ना 12 बजे बुरे सुख में दा छोटा बुढ़ा आवाज छेते छेते के और भी कहना सोलो दा प्रोग्राम द खुला रास के सिफात कास्मेट इस पाकिस्तान के डेट वेलकम हर गले स्टडी में शी खुश आम थी।

सूचना बागा खा दे रेडियो मन खरे कवरी दोन खेदे और सरा सरा बिल्कुल दे रेडियो मन ठा कवरी दोन खेदे प्रोग्राम के साहब पर हां शिरकत का वाला से या मैसेज दिला रहे हो जनाब बिल्कुल जी दिखा ले ला रहे सो फाइनली जनाब मोबाइल नंबर सीधा बिल्कुल जी प्रोग्राम दे बुरा सिवाद कश्मीर दे तरफ न जी यानी अगर मोबाइल नंबर सीधा है कहना हाँ मिलाओ शल जी काल सीधी अगा बोस जी मोबाइल नंबर में जिसे मिली जी यानी कि फेटी सेल नंबर में बहुत नशा मिली जी और तो से मैसेजेस हाँ बिल्कुल अगर रिदुन की चाखाल नहीं सी क्या बोला है यानी हाँ उसका हस्तुन जाइए था हाँ मैसेज होता क्या बोला है नंबर दिस रहा है चूंकि नवा नंबर था बिल्कुल दिस रहा नोट के इसकी रो रो ही देता भी आएगा ना उसे बात कह सकते प्रोग्राम कीजिए जगह प्रोग्राम के दखुला राज कीजिए तो उसे बाग नंबर में निकाल के वैसा फिर कुछ ही नंबर दिस रहा नोट के नन्न पस दी प्रोग्राम के इंशाल्लाह देखा खास सीधी और मैसेज सीधी गाना आप उसी मोबाइल नंबर में शामिल है जी तो नंबर दिस नोट के

32 96 10 329 J Lucky color guru gana chida lucky color busok ji Okay ji let's see first color ji सिफात कश्मीर पाकिस्तान का प्रोग्राम के जी नवा सिम नवा मोबाइल और जी लकी कलर भी देते तब जब यहाँ लकी कलर छिदा वो सुख गिरो सरा जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु जी जनाब अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हाय हाय बेड लक तो सिद्धीर

मच्छी मार्केट हैसूर रोड मिरली के शाहजेब एंड मंसूर ट्रेडर सराम सिफात कॉस्मेटिक्स की सुमर है प्रोडक्ट अवेलेबल दीजिए दोस्तों मेला विदल मेरा लिखी जी आओ बका हेलो कीजिए बिल्कुल जी जनी हेल बका हेल अगर उनकी कहना है सिफात कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जी मिश्ता है बका हेलो की चीता मिला जी तो बिल्कुल आई थिंक जी जनी हेलो बका हेल निज दी थी दोस्तों आमेर बेकरी एंड स्वीट्स की जी सिफात कॉस्मेटिक्स सुमरा प्रोडक्ट थी कहना हाँ तो अवेलेबल जी नो छा के हाँ अवेलेबल दी नवरा के हाँ अवेलेबल दी जी और नवरा की जी बिल्कुल जी तुस्ता जहांगीर भाई सराय छोल प्रोडक्ट छी दी जैसे बाल कॉस्मेटिक्स जी अवेलेबल दी जी और ठाक के जी बिल्कुल दरबत खाना जी से सराम जैसे बाल कॉस्मेटिक्स छोल प्रोडक्ट छी दी अवेलेबल दी से खर के मिशी बिल्कुल हम एड्रेसेस तो अवश्य ले नवागत सिफात कॉस्मेटिक्स सुम रहा प्रोडक्ट थी अवेलेबल है लश्की पछता ना कवाई साजे तो जरूरत भी कहना लहा मखा लश्की पछता ना कवाई नो सिफात कॉस्मेटिक्स दा प्रोडक्ट चीते कहना हर जगह अवेलेबल दी माशाल्लाह पशा खबर घट खबर है दादा कहना ची हर जगह अवेलेबल दी सो खुश और को बिल्कुल सिफात कॉस्मेटिक्स सुस्ते पूरा है अगर बेहतरीन प्रोडक्ट दी मार्केट के अवेलेबल करी दीजिए अवेल दीजिए तो सीधे देख सिक्किम यहाँ प्रोडक्ट है कहना नौ तो डेर डेर फायदे छे दा देर कवि कगा सिफात हर्बल आयल जैतून दी कहना माशाल्लाह डेर जो दे फायदे दीजिए इस्तेमाल वाले से खास करके मशरूमों ने पर हाँ सुम रहा छे बड़ी की मशरूमों ने तो सीधी आयल सरा बिल्कुल अगोता मसाज का वाला है ऐसा बेहतरीन नुशनुमा के मैं देख इस्तेमाल जी और इधन को था पता माशाल्लाह रिश्तों के यहाँ इस्तेमाल जी दर्दनों के यहाँ इस्तेमाल जी तो तकीम जो के हाँ वजूद के दर्द भी जी बिल्कुल उसे मसाज पे कवल है और ये सरा बिल्कुल सिफात स्किन स्प्रे से के मदा आखिर खटीर जो थी फायदे दीजिए दाहो हर कोर की विचार दा जी जहरीला चाहे मैं वो चीज से कहना आखिर मैं आखिर छह वाला गवाई जी उसका बेहतरीन सुकून रिलीफ मिले वे से खुला मुखवास जी बिल्कुल खुले के लगा वाला से घोड़ा मुखारूब जी बिल्कुल घोड़े के लगा वाला से जी और आगे ना इलावा जी बिल्कुल खरजते पर लगा वाला से गर्मा को देपरा लगा वाला से दो ढेर जो चेदा बिल्कुल तुस्ता आगा फायदे इधर कभी असरंग बिल्कुल मीनवाल से रोगा चवाई वेच सिफात माशाल्लाह चिकन ब्यूटी सॉफ्ट है ना फिर बेहतरीन रिजल्ट है और बिल्कुल खुलो मीनवाल दे पर आए तो रहा चे कस्टमर दीजिए सिफात कॉस्मेटिक्स ये तरफ ना बिल्कुल खुलो मीनवाल था बेहतरीन रिलीफ से दागा वो इंशाल्लाह मिला वेज जी प्रोडक्ट पर हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह जिसमें रहा प्रोडक्ट थी अगर तो उसका बेहतरीन रिजल्ट देर कभी और देर पर बेहतरीन कीमत सर ऐसा خوش آور دن کو بالکل داسی چل گو کنا چھے ٹائم رو سر بھی ہی چھے دا آغا لکھائی کام پوتی دا زب داسی چل گو کنا چھے یوں نظیر بودے بالکل داسی چل گو کنا چھے آور دن کو دا آغا میسج سے روغلی دی کنا بودو مندی یوں نظیر چھے دا آغا اچھا والا شاہ بالکل دے سفاد کاسمیٹک جی ہیلپ لائن نمبر چھے دا آغا ہم موجود دا

0: Okay, first match करे वैसे I'm हैं ना अफरीदी वैसे welcome to the show महाराज भाई सही है ना अफरीदी यो जहान मनना जी बिल्कुल दी मिया वाली ना यो जहान मनना थिंक यू सो वेरी मच टाइम रोज हो जाने देर काम देखे ना यो जहान मनना ओके तो नेक्स्ट मैसेज हरो गलत है यो जहान मनना ओके जी भाई खना जिस सिफात कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जिंदाबाद जी यो जहान मनना मजीद खाल और दुन को टाइम रोसरा डेर चेदागा सर बस काम पोते सर तरह से दुन का खाल निशे शामिल वाला नोरम वही छे अस्सलाम वालेकुम याद भाई तो प्रोग्राम सर डेर पर खमोश है सर और वकना वही छे डेर खुश प्रोग्राम करवे वही छे बनू नहीं सोखती जी बिल्कुल अच्छा नाफिया सदीका ओके जी खुरखे यो जहान मनना खुशोला वो से आने वही छे प्लीज प्ले का शक कवे फमा पल प्रदी मासरा ओके जी उसको टाइम खत्म शवे दा गना काव्या इंशा नेक्स्ट प्रोग्राम के कोशिश बकमा सा वही छे महवेश ओके जी फराम कर रखना महवेश यो जहान मनना जी ओके जी नेक्स्ट वही छे लाखो बिही ला नजर बालो नजर बाजो नमा पट छो रवा लाखो
1: नजर माशी
0: ओके जी वही माशाल्लाह अच्छा जो वखार गोलियां करना दे कोट खटना अच्छा वही प्रोग्राम से दे करना अच्छा आई थिंक ठांगना है ओके जी यो जहान मनना है हो वही चे सलीम कठी वाला द ठांगना है सलीम भाई वेलकम हर का लाए चकार वाला खबर है नरो तो वगैरह शाह नंदी किधर शिकाल नहीं मिला शवा को चकार वाला खबर है देवना कड़ाला खैर सबो बुशी इंशाल्लाह यो जहान मनना वही चे अस्सलाम वालेकुम भाई जान कैसे हो आप आवाज बिल्कुल ओके था वही चे उजाला वफा द कर रखना उजाला वफा यो जहान मनना खुरके थैंक यू सो वेरी मच वही चे आई एम जानू गुल फ्रॉम कंदोहेल जी यो जहान मनना है थैंक यू सो वेरी सपोर्ट ड्रीम लो सर खटे मरो सर बेही सर तरह से दला दा यो जहान मनना भाई छे सलाम ना राज भाई अच्छा राज मामू थैंक यू वेलकम जमाफा से एसएमएस आए वही छे कश्यप यो फ्रॉम करेगना कश्यप यो जहान मनना जी बिल्कुल रोतले से सिफार कश्मीर से दगा फैमिली के दगा प्रोग्राम के जी अच्छा अस्सलाम वालेकुम राज रोर संग ये शहजादा बुनेरी अच्छा कराची के साथ प्रोग्राम आ रहा जी अच्छा जी वेबसाइट में जी अच्छा माशाल्लाह डेर है प्रोग्राम दे जी ओके जी यो जहान मनना है थैंक यू सो वेरी मच वही लो रस्तों में झड़ो दुमरा तंग छवे वही साला रुस्ता द जून रता खफस्ते सलीम कटिहेल से वाह जी वाह सलीम कटिहेल से यो जहान मनना है थैंक यू सो वेरी मच आय महीना अफरीदी वंस अगेन वही छी वही छी दुमरा वेलकम रखाऊंगा अल्लाह का दा मिलना छे तो से जयपुरी पसला धशा वही छी देव खान के प्रोग्राम दे है ना अफरीदी यो जहान मनना खरे कहे थैंक यू सो वेरी मच जी नेक्स्ट हां है ना अफरीदी मैसेज करे दा यो जहान मनना तो खुशोर इधर को बिल्कुल टाइम रहा सर तरह से दर्दा का जिंदगी वफा हो करला इंशाल्लाह सबो तबो यूज लिया तो सर प्रोग्राम की मुलाकात के चा मैसेज ना पोती चला का इंशाल्लाह सबो ता शामिल हुआ या हम खा इंशाल्लाह शामिल हुआ यो जहान मंदा ने चांद खटोला और इधर को आगे सरा सरा दिखा खटोला और इधर को उस पर रुख है मुता इजाजत पाकिस्तान जिंदाबाद सिफार का आसमेट एक फाइंदाबाद दिलो अलाप हो अमान
2: It's 12 o'clock. Hourly time check. Is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

हम निहान भाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बात करेंगे सही आवाज दी ओके दे निहान भाई गोसामी तरसी इंतजार गोसामी स्कूल तरसी अच्छा देखा जी शो में मिस करे दी ननमो कुर के स कारवा जखमे छुट्टी करे दो मो वीएल छे मैसेज वक सलामी वर का अनु पठान था जमे खुशहाल सी जुड़ अख्तरा हानी ऑफ मा उम्मीद सबा मंगल मिले वाला छुट्टी है ना डेम्बल आबरू और ताता हां जो रेमल पठान दा मिटखिल होना ओके जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच हम यू जहानवन ना बिल्कुल इधर भी है ना वीएल खा क्या खबर है सही वक्त रहा छे चार में वो कुर के मजा संजय जी तो शो दे पर हमें छुट्टी करे हाय भाई सरंगी छालना हाय ये बरोबर ये शो इज वेरी नाइस हम शो इज वेरी नाइस आई एम मैं विश फ्रॉम कुरक दिराद्रूमी छाल खान खटक यूनिवर्सिटी कुरक न्यू ब्रांच ओके जी थैंक यू सो वेरी मच जहान मन्ना

प्रैक्टिकली हुआ भी है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली हुआ भी है और मैंने देखा भी है। तो नाम जब बच्चों पे रख देते हैं तो मतलब मिसाल के तौर पर मैं एक नाम मतलब सजेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि मतलब मुजम्मिल नाम है, मुजम्मिल नाम अच्छा नाम है, सही है, बहुत अच्छा नाम है, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। और किसी ने अपने बेटे पर रख दिया तो मुजम्मिल के आगे या पीछे मतलब मोहम्मद या अल्लाह मतलब ये सही होता है, मतलब किसी मुफ्ती या मौलाना से रुजू करके उससे बात करके कि ये नाम सही है, फिर वो बताएंगे कि आगे मोहम्मद लिख ले या पीछे अल्लाह लिख ले। तो इसी वजह से जब नाम रख देते हैं तो उसके ऊपर गलत असर कर देते हैं, या तो वो मतलब जब मतलब बड़ा होता जा रहा है तो उसके साथ साथ उसकी जो मतलब आदतें हैं वो बिगड़ती जा रही है इसी उसी उम्र के लिहाज से, वो उसका जो उम्र है तो मतलब बचपन में उसको बीमारी आती है कभी एक कभी दूसरी, तो जब नाम चेंज कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। पता नहीं बस ये हुआ है, ये मैं अपने मतलब ज़ाती तौर पर नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने देखा है और हुआ भी ऐसा है कि नाम चेंज करने के बाद बंदा ठीक हो जाता है। और पता नहीं क्या आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ होगा, आई डोंट नो, बट मैंने देखा है और जो है हुआ भी है ऐसा, सही है।

0: आपके साथ रहते हैं रेडियो मनोटाजी 4.5 कारक, आपकी आवाज आपका एहसास।
1: मंशियात स्मगलिंग का अंजाम सिर्फ हथकड़ी, जेल और बदनामी है।

हे खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 का रख जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: तारखाना दस ख्वाजे ख्वाजे संदर दे लगावली दीदा सशाई वोरवे
2: एमएस डी दहो मेरे डियो पो बाजूर से उपस्य दो नो दा बेंड में तो वो 88.4 वर बंदे रोगलाल
1: तारखाना दा 88.4 सशाई दी
2: एमएस डी 88.4 में चेकला वाला गुवान नो दाहो करक रेडियो और बंदे रोगला दाहो दे करक रेडियो फ्रीक्वेंसी दो 88.4
3: हर यो अरमान पति पूरा कम सका खार तलाड़म ताल पपंगड़ी रोड़म
1: ब्याहवार साचे बाजोर तलोटी चे वार रेडियो जोन ता जहा ओखला चे दास खोजा खोजा प्रोग्रामिना ब्या जहा वरवो
2: बिल्कुल मिजीर साचे सी वार रेडियो तो ता हा ओखला त बिल्कुल पा 88.4 बंदे खोजा खोजा प्रोग्रामिना खोजे खोजे सांदरे अवरे दाई से

रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में

सभी कहना बहुत गर्मी है, मेरे तो बर्फ के पकोड़े के खाने के दिल कर रहा है। किसको पता है कैसे बनते हैं, वहाँ जबरदस्त रखी वो दगा पाते मिस्टर नरसा साइड हो वीडियो पाटल के ना जिस तरह जुड़ी।

अच्छी और दिन के प्रोग्राम से गांव समझ लाए सिर दही वैसे सड़े अमा पतंदर ओला चे अर्थंगयम आय सड़े अमा पतंदर ओला चे अर्थंगयम और सड़े आसान पसे हो चरता आईने रवाखला आय मरदनार बिठाने पर खेरे में जी बैसरंग से और चे मास्टर सबर एवरी होम दा और तपले का जमा कलाम आज सरड़ एरो जो तमन्ना यो जहान मनन शुक्रिया बेहद बेहद मनना

0: نو بیا چې تاسو سره دی کنه خیره خیره کله کله ټیم دی وکنه او نو د سره سو کنه چې کله رون سه بونه راوندې 0927 291 292 0927 291 292 السلام علیکم हेलो ओय काले ड्रॉप से ढेर चीज बनना द काल का लियो जहान मना गुरी नेक्स्ट कलर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम खरे के मिसु खबर के दिखिम जना अच्छा आप ऐसा बात कर रहे हैं बनो से आयशा क्या हाल ठीक ठाक खैरियत थे कैसे हो आप सुनाओ इसके अलावा जो है सारा कैसे है अच्छा सारा भी ठीक है कल सारा ने कॉल किया और आज जो है आपने कॉल की नहीं कल नहीं परसों मेरे ख्याल में कॉल किया थे क्या
1: उसने कल शो में
0: कॉल नहीं कल मेरा शो नहीं मैं सोमवार के दिन जो है 4 से लेकर 5 बजे तक प्रोग्राम किया उसमें कॉल किया था उसने हाँ आपसे तो बोल रहे हैं आप ऐसे करें कि बादाम और इसके अलावा अखरोट जो काल है ठीक है फिर आपका दिमाग जो है और इसके अलावा जो सोच है वो बहुत अच्छा होगी
1: लेकिन वो तो बहुत महंगे
0: अच्छा वो तो बहुत महंगे हाँ तो फिर आप ऐसा करें कि सारा तो आपसे बढ़ेंगे उससे कहे कि आप कम से कम एक एक पाव कम से कम बादाम एक पाव किस ओए काल ड्रॉप से देर जुतमना यो जहान उन्होंने काल के वाले देर जुतमना सर गुरु नेक्स्ट कलर शुक्र सिर लेकिन अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम सलाम खैर से सुख खबर के
1: उम्र
0: ढेर ना समय मनाए वाले अच्छा हाय भाई नो तो दाऊ वैसे लगे थे मु दाऊ लगी
1: भाई आओ लगी हाँ न लगी आओ लगी
0: अच्छा लगी हाँ अच्छा नूर सरंग चल खीर खीर रहते प्रोग्राम और भी
1: प्रोग्राम हुआ तो वापस ऐसा नहीं गई तब यह सेहत
0: माशाल्लाह मिस खुश बार बार ये बात लग गया इधर प्रोग्राम शुरू कर देता
1: चार बजे ना मेरे जल वो मैं लगवा लो बस आखिरी की बस 10-20 मिनट
0: बस लला था मैं सारे इंतजार को लला रोनो गए मोचे लला के करो से गुरु शकनी भी बहो
1: ना बस रहा बरो तो प्रोग्राम तो करो प्रोग्राम फान कर सिद्धि गई दीवी तरी भी गया है वागे
0: आओ करे ना मोचे खेरे के लश के लश के संदेश किन भी कहना खला खला शवी कहना
1: मुझे गर्व पे आज किसी गुरु को लियो मो पल 20 मिनट नौ लगा ले रिडो लगी दलो दखा से जगह डालो हाँ दूर बार वाम तो चली के रिडो को कमरे के वापल लगी दलो
0: अच्छा पल लगी
1: दलो तो वही देखती सी लगी दिली दीदे चलो सुबह
0: नर्सा पर इधर सर शादी हाँ अच्छा बस मिनट से किमी कहना ब्याह दाउ नंदर तक चावल मन से कहे ब्याह रोटी उन शाबरत लाए बस अमीन दास साइड छोटे में प्रोग्राम के सरोसर शामिल है
1: प्रोग्राम
0: के
1: मिर्जर
0: तक सर ढेर जो था मना काल का वाले
1: चलो मुने ले जलीशी जी गोलशन का अवसर था जो लोबा तक का मनाल था रुशहान था जैनब था छोटा मरवा था गुलालई था सारा था जी चुक मावाज वर गया वो टोलो तो सलोम दा ओके
0: सर ढेर जो तमन्ना दे ख्याल के वाले यो जहां अमरना शुक्रिया बेहद अमरना परमेश जल के दो।

क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे? एक पैकेट, एक डील और फिर पुलिस, हथकड़ियां, अदालत और जेल, और इसके बाद बदनामी, टूटे हुए रिश्ते और बर्बाद मुस्तकबिल। मंशियात का कारण

अच्छा जी, नो बिल्कुल दस की भी सी यू संदर तरफ था प्रोग्राम से युवा वर्ग संदर और ददी संदर ने बाद भी जरूर सी कॉल में हम प्रोग्राम की शामिल जी वर्सल सर मैसेजेस और सर ना प्रोग्राम की शुक्र टॉपिक जा बहां दरतव यहां आगे ना मखे सॉन्ग तरफ था जी प्रोग्राम से युवा संदर वर्वी

0: जी जब हर कले ठोल मीन वालू था छेड़छाड़ प्रोग्राम से मोतो इली शी सुबह दुबर तारीख आओ तो से और भाई छेड़छाड़ प्रोग्राम हर बुध पर रोज दस बजे दस ना बारह बजे पर्दा प्रोग्राम तो सर दाई से जी कॉल तर तरसी प्रोग्राम से कॉल से मिले भी बेबैगिना बाद मैसेज ऐसा हर टाइम बेर के भी जी मैसेज हाँ पे इंतजार दी नो किसी कल बने अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मारिया खबर है कि करगना
1: मरियम
0: अच्छा जी मरियम बखेर वाले करगना प्रोग्राम की तरह हर करे हुई वेले वेले अल्लाह दे खेर वकी
1: स्कूल
0: वालता अच्छा जी शाह मतलब ये छे मिस्टर हर्ष की मुकारो कवि से प्रोग्राम की कॉल हो किया सही कम कला उसके सबक हुए शाह माशाल्लाह बस दारत हुए छे मख जान ना मुस्तकबिल के सुजड़ वाले वाड़े माशाल्लाह बस अल्लाह दे टीचर का दुआगानो स्पेशल देर तक भी टिक्शा आओ बिल्कुल दाह द कौम चुकुम द यू खिदमत ही दे इलाके खिदमत है बाद वगाने दी चला तला तुसे जोड़ा के टिक्शा जी दर तू है जी नोम दोबारा वश है तरंगे शाह ना ना खेर दे गुसाम के वे खा शाह दर तू है जी फर्स्ट टाइम दी कॉल करे अच्छा जी दुआ की मख के हक कड़े वो शाहबाद भी होटल शाह बरा दो नो दारत हो चे टॉपिक तेरे बदले दे शाहबाद ठीक है इस खबर आ दो डेरा मने ना लोया खास शी नूर बा अच्छा तो सलाम दुआ
1: जी भाई मरवा तुम्हें सलाम दनों में तो लग
0: सलाम ठीक है वालेकुम अस्सलाम डेरा मने शाह गुस्सा दे खत्मा
1: जी भाई
0: सही शो यो जहान मने ना ओके लाफिज थैंक यू कॉल कॉल डेरा मनना वही छे गुसार थला ना खैर डेरा मनना नो बिल्कुल चिकम मैसेजेस दी दावे हम प्रोग्राम के बिल्कुल शामिल हो चिकम 8583 दा मैसेज दरो लिदा हम ओ देने लबा चिकम ऑफिशियल नंबर बने मैसेज रोगली दा टोल बाबर गाम के शमिली जी

0: हाँ जी कॉल हाँ और सब से मैसेजेस हाँ मैसेजेस बा शामिल हो गया मखे कॉल तरफ तरह अस्सलाम वालेकुम फारूक के फेस्टिवल था बुरगाम के डेढ़ डेढ़ हर के ले देवी अच्छा सही मतलब है रेडियो बैंड तो रेडियो अमन खरक फिर बंद रोला सही सही बिल्कुल शानूर सही कहना व्रजा थे रख रहा
1: बिल्कुल हाँ जबरदस्त है जी तासो खायो जी
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक
1: वाला टॉपिक मन खबर की जी तो तगला शो उमर वो कहना 11 बजे दीजिए राशि कहना
0: जी
1: अब इजाज़त है इंतजार करो दर्द दगावनियां दर्द की हो तो मशीन में का स्टार्ट करो सब
0: सही
1: शहर माता तकलीफ नहीं माता का रुक बस चार वर्ष वगैरह बांधेगा बस
0: बिल्कुल ना माशाल्लाह बस शाह बरदो गोरा दा मतलब लखनऊ से गोरा यो गरीब खलकते हो बल्दा छे लग अच्छा सरा मतलब कोऑपरेशन हो के मदद हो के नो दे बने गुर अल्लाह ताला खुश अली जी नो मदद सुकुम दे दचा जरूरत भी नागे जरूरत पूरा केवल बचार हुई मदद केवल पकार दी
1: बिल्कुल जी बिल्कुल बस साथ एक तरफ कर शू
0: जी
1: दा दक्कन दाखिल ना अई तरफ ता मोना कर थी मन का बांडा
0: सही
1: पसंदी कार्ड के मन का बांडा की जो की मुझे तरबुर ना दी
0: सही
1: ढोल
0: तमाशा बंदी
1: हुई
0: है
1: सही
0: जी जी हेलो हेलो खजी आवाज दे लोड़ा कॉल दे ड्रॉप शो बिल्कुल फारूक वीसी वाला کال کړې ما خبر روانه کړې ما خو بدقسمتۍ سره آواز یې کټ شو کال دې ډراپ شو سیگنل مو بخیال وفا نه وکړه ډېره مننه کال کولې یو جهان مننه آواز دې ڈراپ شو دوباره هر دې کال کولې شي

और ये सब फ्रेंड के नेम। काश तेरा दीदार अगर मेरे खून होता, खुदा की कसम एक एक कतरा तेरे एक एक झलक पे बहा देते। हाँ जी, डेरा मनना तारहान यो जहान मनना। नेक्स्ट हेलो सुपरमैन, कैसे हो? और तोसी शो बहुत मजे की है आपकी तरह। और सुपरमैन कौन सा डिश ज्यादा कर रही हूँ जो आप इतना स्वीट बोलते हैं? मैं डॉक्टर इजहान फ्रॉम करेंगे डेरा मनना। थैंक यू सो मच मैसेज के बोले डेरा डेरा मनना डॉक्टर इजहान यो जहान मनना। और वेलकम टू द नाइट शो, आई एम फाल्कन बख्तर नूर फ्रॉम नार वजीरिस्तान खैसूर। ग्रेट आरजे, हाउ आर यू? स्पेशल सलाम टू यू एंड सलाम टू आवर लिसनर्स। स्पेशल सलाम टू सबीर वजीर एंड आर के वजीर। प्लीज प्ले दई वसंतरा। ठीक है, बस सही दसो गौरव मौत मेले जरूरी था। लेकिन डेरा मनना बख्तनूर वजीर मैसेज को ले। नेक्स्ट तारिक भाई वेलकम एंड स्टडी माशी पखेर रोगली बदत्त का तुरश पाशी सरंग ये लक शये कना सब बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कान हटक मैसेज करे डेरा मनना। लो यहाँ से मुस्कान हटक मैसेज को ले। सलाउद्दीन फ्रॉम बन्नो, सलाउद्दीन फ्रॉम बन्नो ग्रीन बनी गोल। अच्छा, सलाउद्दीन फ्रॉम बन्नो ग्रीन सुरानी। सलाम टू तारिक गुल एम एस जी राजकीय की अख्तर नवाज लला और शहीद खान स्पेशल गुल लला शहीद वेरी ब्यूटीफुल साइडर डेरा मनना। थैंक यू सो मच सलाउद्दीन यो जहान मनना बनी गुल नदी मैसेज करा है। और अगेन डॉक्टर इजा अरे तरखाना द चिट चाट न्यू कमर्शियल। अच्छा जी, शाशा मतलब प्रोमो यादवी। बिल्कुल दा होडेर मतलब मक्षी नहीं जोड़ा शिविर दो झंडा नहीं जोड़ा शिविर दो सही जोड़े मन ना। बच्चे आयशा तारा सोमो मिस रोशनी मनत फरिश्ता सोनिया रोमी मजलूम को सलाम, आपको भी सलाम। हाजी सही डेर मनन। वालेकुम अस्सलाम यो जहान मनना। एटमी लाली जिमिल फ्रॉम खरक। वही कहना चे चपादा समय खालस खबरेगी जद दस्तरग पो लेमो के गर्जोमा डेरा मनना लाली जिमल।

और वे चपा दू सॉरी पैनेश्वर डेरे मन न थैंक यू लाली जी मन मैसेज को ले सलामुना तारिक भाई सरंग ये शे तारिक भाई मोहो जोन तमे सराचाई जोन तमे सराचाई तमे अदरक वेड वो चवल तारिक भाई ते चाई से बियाई देर लजो जो जये माफ वाद मंडवे ना खज डेर मन है ना सही बिल्कुल बादशाह देखड़ी ची अदरक ते वर चवल दे अदरक से आता फायदा वर की भी दिन लवा चाय की मदद सरा चाय सेहत फायदा वर्ग भी और डेरा मात सा यो जहान बना थैंक यू अगेन आई एम फाल्कन बख्तनोर फ्रॉम नॉर्थ वजीरस्तान आई लाइक योर शो शो इज द बेस्ट तारिक सिंह हाउ आर यू मेरी तरफ से तमाम लिसनर को सलाम प्लीज अब ले दाई वसा अंदर ठीक सो सही जसो गोरो मत मिलाओ शीज अब ले गया और डेरा मने ना नेक्स्ट मैसेज सलामोना सुपर डुपर तारिक सर जी एंड सुपर स्वीट एम एस जी आवाज ओके बीजीएम शो की तरह वेरी वेरी नाइस सलाउद्दीन ऑफ बन्नो ग्रीन सोरानी डेरा डेरा मनना सलाउद्दीन मैसेज के बोले ग्रीन सोरानी ना मैसेज कराए जो बोली चाहिए करेक्ट ना सलाम भाई सरंगे चाल लाई शये डेरा सॉरी वजीहा मैसेज कराए और डेरा मनना वजीहा लोहे हजशे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुल खैर खैरियत थे डेरा डेरा मनना वजीहा मैसेज के बोले

और वलचा मैसेज करी दई, खिरहान मैसेज करी दई। सो शेर रेखो सॉरी पॉइंट शुरू बंद है, जिन्होंने इश्क से एक महबूब के तफसीर में लिख दिया, नामुमकिन हालात बटूल रहता मुमकिन की खज डेरा मन ना। खिरहान आपको सलाम, आपको सलाम और एमएसजी को भी सलाम होना करे खान डेरा मन ना। थैंक यू सो मच खिरहान, लो यहां से मैसेज के वाले डेरा डेरा मन ना।

और बलचा मैसेज कर दे खजी। अच्छा जी सही मोबाइल जरा हटक मैसेज कराई खबर लिखी सही ठीक छोड़े रे मन ना सॉरी मुस्कान हटक मैसेज कराई अच्छा जी सही ठीक छुआ डेरा मन ना मुस्कान हटक लोहिया खास जी सही अगेन शी इज वेरी नाइस आई एम फाल्कन बख्तनूर फ्रॉम नॉर्थ वजीरिस्तान स्पेशल सलाम टू यू एंड स्पेशल सलाम टू ऑल लिसनर्स और सबीर वजीर खैर दा हमेशा मॉल ऑलरेडी शामिल कर दे ठीक छोड़ेरा मनना नेक्स्ट बाग में बैठकर हाथ में रुमाल था चिड़िया आकर चिड़िया आकर मैंने पूछा तारिक खान का क्या हाल था जंग हाथों से करो तलवार क्या चीज है मोहब्बत खुदा से करो इंसान क्या चीज है बिल्कुल सही हीर खान मैसेज कराए डेरा मने ना

अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सदर नियाज खान फ्रॉम बन्नो, बन्नो टू मामा खेल। आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है सईद, डेर रजियत मनाना यो जहान मनाना मैसेज के वाले और फर्स्ट टाइम मुख्य मैसेज करें डेरा डेरा मनाना नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। माशाल्लाह माशाल्लाह डेर जबरदस्त शरीद वकड़ा। अच्छा जी, फ्री के रख ले तड़तंग नश्ता ही नहीं, मतलब पैसे वो मोबाइल की नश्ता। माय स्पेशल सलाम टू इंजीनियर मिजीता और ताता, आई एम डॉक्टर जोया फ्रॉम टुमेल। खजी डेरा मनन बस कल के लवेदा से फ्री हम मैसेज कवले शिशा डेरा मनना। देना इलावा सनम अफवानी मैसेज कराई दे दो, अफगानिस्तान ने मैसेज कराई नो डेरा जी तो मनना। सनम अफवानी मैसेज के वाले सलाम वाई विच, अस्सलाम वालेकुम मैनेजर से संग गई खे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक डेरा मनना। डेरा मनना नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम शाजिया वजीर एंड रानिया वजीर, माशाल्लाह प्रोग्राम जबरदस्त जाए। मोता फरहान गुल वाला सॉन्ग प्ले क्या शाह ठीक छो, मोता मिलौशी के ना बेदर तसंदर प्ले क्या हो कन में प्लेयर नकड़ा बल प्रोग्राम की दर्जा जरूर प्ले शाह।

तारा खान हमें मैसेज कर दो थोड़ी रजिया तमन्ना ना कभी और बच्चे तारा खजीज अस्सलाम वालेकुम शई बरोबार ये जफहीमिया दे स्पेरके चौक ना प्रोग्राम दी जीर खान कभी मनना सही ढेर मनना यो जहान मनना बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू और विच अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम पखेर रोगले कैसे हो तारिक शीज वेरी नाइस एंड बिल्कुल आपकी तरह आज फ्री मैसेजेस हैं तो मैंने सोचा कि मैं भी कर लेती हूं मैसेजेस तो फ्री टेक्स वालों को वेलकम कर दो ओके सलाम से मिजी बनाहिल आयशा हटक आईजहान रोमी और मेरल खानी मेंसा खानी मानो सोनिया खान जनत वजीर जरकेश हवेद जोहा वजीर और रोशी खान एंड जाब को स्वीट स्वीट सलाम

और मेरी इस दीवानगी में कुछ कसूर तुम्हारा भी है। तुम इतने प्यारे न होते तो हम इतने दीवाने न होते। कोई मरेगा तो नहीं मेरे बिन, दो चार लोग रोएंगे दो चार दिन। डेरा मनना।

और वही कहना चाहिए प्रोग्राम के लास्ट में कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले करो, बहुत सैड सॉन्ग। अच्छा सही है, कोशिश को बिल्कुल डेरा मने ना फरिश्ते बनो ना, मैसेज करे तो उसमें डेरा सिया तो मने ना कि भी जतन हाँ बिटनी मैसेज कराई दे तो उस डेरा सिया तो मने ना कि मैसेज के बोले।

और दिन लवाम यस यही ठीक छो और अरे जरा किस चीज की इन्विटेशन है क्या? अच्छा जी सही ठीक छो सलाम टू जरा हटक डेरा मन ना।

हाजी सही डेरा भन न यो जहान भन न बल मेसेज ओगले दे हाजी जरा हटक सॉरी आयशा हटक मेसेज गरे तो डेरा भन न तरहान मेसेज करतो थो डेरा जत मन न और मरियम सिस्टर को सलाम डेरा मन न तरहान मेसेज को वाले दिन लव नेक्स्ट में डॉक्टर आयशा अरे मो मेसेज दे टू लो खड़ल अच्छा जी सही ठीक है डेरा मन बिल्कुल बस शामिल में देखल टू मैसेजेस सनम वानी हम मैसेज करे तो उसका डेरा जिया तमरन का वानी सा नहीं मैसेज कराई और स्ट्रीमिंग बने शुभ और भी खजी टाइम चुकम डेरा सरा खत्म शुरू दे सईदा मजीद मैसेजेस चुकम दी का ना ये कॉल चुकम दिया गाज़ा से मिले वाले नशा जगह टाइम दे बिल्कुल रसरा खत्म शुरू नौ इजाजत दे नौ खोला द टोल डेरा जिया तो मनना चा प्रोग्राम से कॉल वगो चा प्रोग्राम से मैसेज वगो दागे टोलो डेरा जिया तो मनना की दिल चा प्रोग्राम की कॉल नौ लगे दो आगा दफा हकी ना नो इनशा नेक्स्ट प्रोग्राम की कॉल जरूर लगी जी और कल कल कॉल ज्यादा मैसेजेस सॉन्ग नो अधिक हो जब आने चाहता मुकानश मिलाओ नो नेक्स्ट प्रोग्राम की वाइन तो कॉल जरूर लगी जी द टोल डेरा मनाना चाह प्रोग्राम से कॉल होगा चाह प्रोग्राम से मैसेज होगा आगे हम डेरा मनाना दिल नो चाह हम शेर प्रोग्राम और आगे हम डेरा ज्यादा मनाना के भी मजीद कॉल प्रोग्राम के नशे में शामिल वाले जगह टाइम देर सर खत्म शुभ बाखिर की वर्जी दी सॉन्ग वो तरफ बांधे और दे सॉन्ग तरफ बस इजाजत ना खोलो इनशाला कला भी दर सर कीजिए मुलाकात नो नंदे बुध व्रज